सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम जी बोलो। नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो। नित्य नित्य जपिए।

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जी बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जी बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण नित्य नित्य जपिए कृष्ण नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो बोलो हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो सत्य नाम सत्य

साईराम डियर लिसनर्स, भारत और इंडिया इज अ कंट्री रिच इन कल्चर एंड वैल्यूज दैट आर प्रोपगेटेड बाय हर एंशियंट सेजेस. इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू अपहोल्ड दीज वैल्यूज एंड बिकम आइडियल सिटीजन्स. इन टूडेज डिस्कोर्स भगवान बाबा एक्सप्लेन्स व्हाई एजुकेशन मस्ट मोटिवेट अस to strive for the welfare and progress of society. Let us now listen to Bhagwan Baba's divine discourse delivered on the morning of 15th May 2000 during the inauguration of the summer course in Indian culture and spirituality in Brindavan, Bangalore.